खेड़ा तू खड़ा साफ बन के कान भर के मिलेगा ना कुछ मुँह खोले जब ही तू घान बके एहसान करते तुझ पे तेरे दोस्त करता पीठ पीछे बातें आमी कौन स्वदेशी मीमावाली या सुन रेंगता कीड़ा तू खड़ा सांप बन के कान भर के मिलेगा ना कुछ मुँह खोले जब ही तू घान बके एहसान करते तुझ पे तेरे दोस्त करते